0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Digestion Cool Tips with Dabur Pudinhara.
1: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हेवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा, योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ.
0: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे. अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते. सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा. अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे.
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:07।
1: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग 7:26 ऑन द क्लॉक ऑन दिस थर्सडे की सुबह काफी सनी शुरुआत हुई है दिन की। एज एक्सपेक्टेड 34 डिग्रीज सेल्सियस, ह्यूमिडिटी क्वाइट हाई 64%, पर विंड्स ब्लोइंग एट 16 किलोमीटर्स पर आवर, हाईज ऑफ 38, लोज ऑफ 33 डिग्रीज।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2।
4: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
0: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अगर आप इस बात को सोच के अंगड़ाई ले रहे हैं कि यार फिर वही ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, वही मैदान रोड से जाऊंगा, देयर सम रियली गुड न्यूज।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: कितनी कमाल की बात है ना कि एवरी डे इन द मॉर्निंग वी फाइंड सम रीजन और द अदर टू सेलिब्रेट अबाउट द रोड्स इन द यूएई। एक तरफ जहां पर यू नो ट्रैफिक से फंसने में डर लगता है, बट द अथॉरिटीज आर हार्ड एट वर्क यार। मतलब इतने ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहां पर होते रहते हैं एक साथ, एंड द न्यू वन इज मैदान में, अल मैदान में। There's a new Dubai road project that could cut the journey to around 10 minutes. 10 minute ki ho jayegi. And this latest project hai, including 3.7 kilometers of bridges, 17 kilometer roads, nayi wali brand new, and it's aimed at improving connectivity for more than 5 lakh. Half a million residents across that corridor. So in case मैदान आपके काम के रास्ते में आता है, so congratulations भाई। कौन सा वो गाना है जो आप सुनना चाहते हैं? It's the first hour of the show, आप जानते हैं। Early morning request भेजिए 0543091062 पर। This is the Big Breakfast and I'm Sid.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
2: Hey.

0: आजा बे आजा लुट ले गया फ्रॉम धुरंधर। नहीं, खुद आने की भी जरूरत नहीं है, बस रोज दो तीन रील्स अगर आपने भेज दिए तब भी चलेगा। फ्रेंडशिप की आजकल ना सोशल मीडिया की वजह से डेफिनेशन ही पूरी की पूरी चेंज हो गई है।
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Yeah, what is the true test? What is the true, you know, guardrail of friendship, yardstick of friendship is not the fact कि अगर आप रोज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, रोज की अगर आपने मिनिमम दो रील्स शेयर नहीं की, then there is something wrong. And I'm not joking here. This is not like my imagination. There's one guy who's taken this to a whole new level. He reported his friend as missing. उसने जाकर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवा ली कि मेरा फ्रेंड मिसिंग है। तो पुलिस वाले ने पूछा कि भाई क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके फ्रेंड मिसिंग है? उसने कहा उसने दो दिन से आपसे बात नहीं की, नहीं दो दिन से आपसे मिले नहीं, नहीं दो दिन से मेरे साथ कोई रील शेयर नहीं की उसने। नो रैंडम मीम्स, नो 3 बजे, नो 3 AM रील्स, नथिंग, कंप्लीट साइलेंस। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरा दोस्त इज मिसिंग, प्लीज आप रिपोर्ट फाइल करो। या आई मीन ऑफ कोर्स द पुलिस पीपल वर एज शॉक्ड एज यू आर राइट नाउ, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू स्टोरी। उसके बाद रिपोर्ट लिखी कि नहीं, उसको डंडे मार के निकाला गया या ऐसे ही, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव। बट टॉकिंग अबाउट मिसिंग फ्रेंड, आप जानते हैं insurancemarket.ae 30,000 गूगल रिव्यूज हैं विद 4.8-star रेटिंग बिल्ट इन द UAE, ट्रस्टेड अक्रॉस द UAE। एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट, एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट। insurancemarket.ae। Here's Lijo George, DJ Chetas, or is this Chetas? With Jana Samjana, this is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:07।
1: Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes. Vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
7: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
8: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक मॉर्निंग 9:08
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:07।
1: बॉलीवुड

0: 10:10 on this Thursday. चलो खेलते हैं बिग बॉलीवुड क्विज.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: You know, आज एक बॉलीवुड की महान हस्ती का बर्थडे है. रिसेंटली वी वर सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट अनुपम खेर इज यू नो डूइंग हिज 555th फिल्म. ये तो कुछ भी नहीं है. ये जिनका आज बर्थडे है ना, ही इज ऑलरेडी डन मोर देन 700 फिल्म्स इन बॉलीवुड. कैन यू 700 से भी ज्यादा फिल्में ये कर चुके हैं. दैट इज क्लू नंबर वन फॉर यू. अगर आपको जीतने हैं दो ओपन मूवी टिकट इन बिग बॉलीवुड क्विज, देन यू गॉट फिगर आउट हु आई एम टॉकिंग अबाउट. किसका बर्थडे है आज. वन अदर रियली बिग गिव अवे क्लू इज द फैक्ट दैट ही इज द डैड ऑफ अ लीडिंग एक्ट्रेस इन बॉलीवुड. आजकल की एक लीडिंग नेम, लीडिंग फीमेल एक्टर जो है उनके ये डैड हैं. And then as soon as you hear this, आप automatically पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ.
2: आओ ललिता, तुम यहाँ? मैं जाग रहा हूँ या कोई सपना देख
0: रहा हूँ? कौन है ये? अगर आपको पता है किसकी आवाज थी, then give me a call 800-1062. Which Bollywood महान हस्ती celebrates his birthday today? 800-1062 to win two open movie tickets. ऐसा भी कोई ऊंचा लंबा कद नहीं. एंड देन वन ऑफ हिज फर्स्ट फ्यू फिल्म्स वाज सत्य पे सत्ता, जिसमें उन्होंने मंगल का रोल किया था. आज गुरु है लेकिन गुरु नहीं, मंगल का रोल उन्होंने किया था. किसकी बात कर रहा हूँ? इन केस यू नो द आंसर, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: एंड टॉक अबाउट तलाश, अगर आपके पास एक 2017 या 2018 का मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर है ऐसा लैपटॉप आपके पास, देन इट इज टाइम टू तलाश अ न्यू लैपटॉप.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये एप्पल वाले खुद कह रहे हैं कि 2017-2018 के जो कुछ मॉडल्स हैं दे हैव बीन मूव्ड ऑफिशियली इनटू द ऑब्सोलीट लिस्ट. ऑब्सोलीट मन जे ये कि अब जो नॉर्मल एप्पल हार्डवेयर रिपेयर का सपोर्ट आपको मिलता था ना, वो नहीं मिलेगा. बेसिकली ऐसा आइटम मेरे पास लेके नहीं आने का. इट्स एप्पल वे ऑफ सेइंग कि भाई प्लीज बहुत हो गया, हाँ बहुत घिस लिया आपने उसको, अब नया लैपटॉप खरीदो. अब लैपटॉप खरीदना तो आपको पता है कि व्हाट इज द प्लेस दैट यू हैव टू हेड टू शराफ डीजी. दिस बैक टू स्कूल सीजन, इट्स टाइम टू पावर अप फॉर एआई एम्प्लीफाइड लर्निंग एट शराफ डीजी. यू कैन शॉप फॉर लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड सो मच मोर. गेट अ चांस टू विन योर परचेज बैक अप टू 5,000 दिरहम्स विद यू बाय VPay. Plus, students and teachers enjoy an exclusive 5% discount. So, jaldi kijiye, head to Sharaf DG showrooms today for the best back to school deals in town.
1: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली. इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ. डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश. डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन. इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन.
1: लिसन टू हर एवरी डे.
4: मोगेम्बो खुश हुआ.
5: हेलो, गुड इवनिंग.
6: गुड इवनिंग. आई एम अज्यूमिंग यू नॉट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान. वेयर आर यू फ्रॉम?
5: आई एम फ्रॉम फिलीपींस.
6: ओह माय गॉड, यू लिसन टू बॉलीवुड?
5: Yes, I do.
6: Very nice. Do you understand Hindi?
5: People are friends, Indian friends. Because my husband is from Pakistan.
6: That is why. So did he teach you any Pakistani, any Urdu?
5: Some words.
6: Has he called you khubsurat yet, which means beautiful in Urdu?
5: No. Because my husband is not that too sweet, you know.
6: Wow, very good. So how did you fall in love with him if he's not sweet?
5: But he's kind.
6: All right, Apple. I love your name, by the way. Apple Genie. Apple.
5: Yeah, thank you.
6: I'm going to ask you a question now. I hope you enjoy your food because Filipinos, they love their food.
5: Yeah.
6: So I'm going to give you three options and you have to tell me out of the three which one is a German delicacy. Ramen, pasta or Swabian noodles?
5: Bean noodles.
6: Absolutely correct. Intelligent Apple.
5: Yeah.
6: Congratulations.
5: Thank you.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Mansi. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 10:28 on the clock and let's take a look at E11, 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Things looking much better now. 6 se 8 minute ki der yahan par aapko milne wali hai. Then there is also 62 ka traffic is behaving much better now. D89 airport road pe aapko zarur traffic milega going towards Dera. 3-4 minute ki der yahan par. Then there is also Ribat Street. Aap subah se congested hai, slow moving traffic when you cross Festival City wala area. Then there is 66 pe northbound traffic going towards E11 Sheikh Zayed Road from Jadaf. Yahan par aapko milegi 5 se 6 minute ki der.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
7: Katl karti hain nigahein ki dil ko khabar na ho. Zakhm deti hai aisa ki dard ka asar na ho. Humne samjha tha ishq-e mohabbat ko hi khayal-e-dil. लगता है डर बस इतना वो मेरा अहम शक्ल ना हो.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
1: द बैटल फॉर द थ्रोन ऑफ मिर्जापुर इज फार फ्रॉम ओवर। The saga moves to the big screen. XL Entertainment brings you the most explosive, unseen chapter of the Mirzapur universe at a theater near you. Releasing on the 4th of September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win free invites, keep listening to Big 106.2. Big 106.2. That's my song.
3: You know what time it is, yeah, yeah.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटाएगा?
4: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पाँच?
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: real cool like.
1: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
2: Big 106.2.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: Kar hi nahi sakte. Chaho bhi to nahi kar sakte.
2: Hi Sara.
3: Hi Avni.
2: Are you excited for Big Check in Germany?
3: Of course.
2: But let's see, aap ye German food dish contest jeette ho ke nahi ji. You ready?
3: Yeah. Yes.
2: So first option is sauerkraut, second is kimchi, third is pickles.
3: Sauerkraut, sorry.
2: You sure about this one?
3: Yes.
2: Lock kar diya jaye?
3: Yes, lock kar diya jaye.
2: And that's the correct answer. 1 to 10 ke aapne khud ko 6 number diye, phir bhi aap jeet gaye bhai.
3: Yeah, I was so skeptical. I was like, is it correct or not? But then I was like, okay.
2: Acha, kimchi khaiye?
3: हाँ खाई है.
2: पिकल्स खाए हैं?
3: पिकल्स ऑफ कोर्स.
2: और ये सॉरक्रॉट खाया है?
3: नहीं अभी तक तो नहीं.
2: नहीं खाया है तो ये आपकी चेकलिस्ट में होगा जब आप जाएंगे.
3: That's amazing.
2: Okay. Well, अभी आपका नाम सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुआ है, अभी और प्रोसेस बचा है, और भी कैंडिडेट्स होंगे. लेट्स सी आप जर्मनी जाएंगे या नहीं जाएंगे. बट फॉर द डे आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है इन बिग चेक इन.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम लेके चलने वाले हैं आपको बिग चेक इन जर्मनी पर एंड जस्ट नॉट दैट अ लॉट मोर कमिंग योर वे. लव स्टोरीज पार्ट 3 जो है सीजन 3 जो है वो भी आने वाला है. उनमें कौन कौन से कपल्स होने वाले हैं, किस किस की पेयरिंग है, कौन डुओ आएंगे हमारे साथ, कितने चैप्टर्स होंगे इसमें, ऑल ऑफ दिस राइट अवे इन दिस आवर विद द बिग मिक्स. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:09
1: Bollywood.

0: Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ एंड दिस इज द हैप्पी न्यूज बिकॉज ग्लोबल विलेज जो है वापस से खुलने वाला है इन अक्टूबर. एग्जैक्ट डेट नहीं निकली है लेकिन मिड अक्टूबर तक खुल जाएगा. नो ऑफिशियल डेट हैज बीन अनाउंस्ड बट द प्रीवियस सीजन 30 वो क्लोज हुआ था May 31 को आफ्टर री ओपनिंग ब्रीफली ऑन April 20th. एंड स्टिल रिमेंबर क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ यहाँ पर. April 20 को जैसे ही री ओपन हुआ था ना मैं पहले ही दिन पहुँच गई थी एंड आई जस्ट लव द वाइब. वाई बिकॉज एक तो इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और लोग इतने खुश थे. Literally, I'm not even kidding. एक शॉपकीपर ने मुझे ऐसे ही फ्री में दे दिया था कि मैम आपने इतनी शॉपिंग करी है तो आप ये ब्रेसलेट जो है आप मेरी तरफ से ले जाओ. See how cool is that? And season 31 फिर से शुरू होने वाला है, खुलने वाला है अक्टूबर में, मिड अक्टूबर. लेकिन फिर भी यार ऐसे पॉकेट थोड़ी ढीली तो रख के जानी पड़ती है क्योंकि जब मन करता है ना कि यार मैं ये चीज़ ले लूँ, क्या पॉकेट अलाउ कर रहा है, इतना खर्चा कर ही लिया है तो ये भी ले लूँ. बट वो चीज़ देखते हुए ऑल आई थिंक अबाउट इज
3: बाखुदा तुम ही हो हर जगह तुम ही.
2: और अगर वो चीज़ ना लूँ ना मैं बस पूरी रात मेरे दिमाग में वही चलती रहती है. व्हाट इज इट अबाउट यू, हाउ इज योर शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोबल विलेज? क्या क्या कभी बहुत ही अच्छा बाय किया है कुछ ग्लोबल विलेज से, विच इज योर बेस्ट बाय? डू लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर. एंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
3: The battle for the throne of Mirzapur is far from over. The saga moves to the big screen. XL Entertainment brings you the most explosive, unseen chapter of the Mirzapur universe at a theater near you. Releasing on the 4th of September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win free invites, keep listening to Big 106.2.
4: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
5: Listen to her every day.
6: Mugembo! खुश हुआ
7: तंजील, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने कुछ महीनों पहले मुझे फोन किया था एंड आपकी सिस्टर आई थिंक वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल, आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो उस डिपार्टमेंट का क्या हाल चल रहा है, हुई नहीं हुई, मिली नहीं मिली?
8: अभी तक नहीं मिली, बस अभी तक सर्चिंग हुई रही है।
7: ओहो, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं?
8: नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन है।
7: बस लड़की हो, जिंदा हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना। फिलहाल आप तंजील आए हैं तो हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। 3 चीजें जो आप दही से बना सकते हैं।
8: दही से खीर बना सकते हैं।
7: दही से खीर बना सकते हैं। वाह वाह वाह, ये जो आपने रायता फैलाया है पहले जवाब में, मजा आ गया है तंजील। 3 हनीमून डेस्टिनेशंस जहां आप जाना चाहेंगे।
8: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी।
7: ये देखो जवाब आया ना,
8: इसका जवाब माइंड में रहता है
7: हमेशा 24/7 आपके माइंड में यही रहता है सर, और इसलिए आपको ध्यान नहीं है, आप दही से खीर बना रहे हो।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM The Big Thrill with Nancy. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Nancy. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
9: Traffic is moving slower than usual on some major routes, particularly of course on Sheikh Mohammed bin Zayed Road, E311, par aapko congestion mil jayega around Dubai Sharjah border. लेकिन there's also been a reported accident on SMBZ road near Global Village. अगर कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, do let me know. Call करके 800-1062 पर.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
10: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
1: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ. एंड होता है यार, थिएटर्स में मूवी रिलीज होती है लेकिन मन करता है यार मिस हो गई है, अब हम कैसे देखें, अब हम ओटी का वेट करेंगे. लेकिन दिस फिल्म विच आई एम गोना टॉक अबाउट, आवारापन 2, अब रिलीज होने वाली है OTT पर. कब, कहाँ, कैसे, लेकिन द फिल्म सक्सेस इज मैसिव यार. Around 210 to 220 crore rupees worldwide, and just not that, lead me of course, हमारे favourite इमरान हाशमी थे in his iconic character शिवम पंडित, दिशा पटानी and शबाना आजमी भी थी इस फिल्म में. इमरान हाशमी calls this film his best film yet and a rarest of rare phenomena. 2007 की जो release थी, that was a flop film back then, लेकिन इतनी cult film बन गई कि इवन आफ्टर 2 decades उसका सीक्वल बना. एंड अगर आपने वो भी मिस कर दिया इन थिएटर्स, तो 9th अक्टूबर को अब वो Amazon Prime पर आपको मिल जाएगी आवारापन 2. देखी है नहीं देखी है, August 14th को रिलीज हुई थी यहाँ पर. अगर देखी है कैसी लगी कि बताओ मुझे 800-1062 पर. एंड अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: If you are like me, कि मूवी तो पसंद आ जाती है, मजा आता है देखने में, लेकिन सीरीज को शुरू करने में ना खौफ लगता है, डर हो जाता है कि यार अब तो ये खत्म करनी पड़ेगी. But this season, this series got 4 stories. तो लगता है कि यार आप 4 छोटी फिल्में देख रहे हो.
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लव स्टोरीज 3 जो सितंबर 18 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगी. द इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड एंथोलॉजी इज सेट टू रिटर्न विद 4 न्यू स्टोरीज टू एक्सप्लोर लव, डिजायर, इंटिमेसी एंड कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन रिलेशनशिप्स. कास्ट बहुत अच्छी है यार. द सीजन फीचर्स राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अभिषेक बैनर्जी, अली फजल, राधिका मदान, सिद्धार्थ, अदिति राव हैदरी, गुरफतेह पीरजादा एंड द न्यू कमर सना थम्पी. 18 सितंबर इट. तो बेसिकली मुझे ये खत्म करने के लिए खौफ नहीं पैदा हुआ कि यार ओहो शुरू करूंगी तो देखनी पूरी पड़ेगी. हम एक एक एपिसोड, एक एक हल्की हल्की छोटी फिल्म लगती है ना, शॉर्ट फिल्म लगती है, तो देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं ना. अब ये प्यार की बात हो तो फिर कैसे नहीं देखूंगी यार. Another favorite of Karan Aujla coming up your way for a reason. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 2:07।

0: 20,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बात करी थी अ फिल्म विच इज यू नो लाइक्ड लव्ड अक्रॉस ऑल जनरेशंस. बात कर रही हूँ मैं थ्री इडियट्स की. ये फिल्म जब रिलीज हुई थी मैं बहुत छोटी थी, तो जब भी मुझे मेरे पैशन की बात करनी थी ना मुझे मनाना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे घर वालों ने देखी थी ये थ्री इडियट्स. राजकुमार हिरानी की ये फिल्म जिसका सीक्वल अब आने वाला है, इट्स इन द राइटिंग स्टेज. जो लिख रहे हैं अभिजात जोशी, द राइटर हु हैज वर्कड इन हिंदी सिनेमा सिंस लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स नाउ. एंड राजकुमार हिरानी एंड अभिजात इज अ डुओ नाउ. उन्होंने साथ में काम किया है लग रहा मुन्ना भाई में, पीके में, संजू में, एंड ऑफकोर्स ऑल फिल्म आर लाइक मैसिव सक्सेस. लेकिन थ्री इडियट्स से कोई मैच नहीं खा सकता है भाई. आमिर खान, शर्मन जोशी, आर माधवन सीक्वल में पक्का होने वाले हैं. करीना कपूर, बोमन ईरानी, ओमी वैद्य जो कि चतुर का जिन्होंने रोल निभाया था, मोना सिंह होंगी नहीं होंगी ये नहीं पता, लेकिन ऑल वी गॉट टू से फॉर द सीक्वल. आई होप इट गेट्स, आई होप एवरीथिंग इज ऑल इज वेल. वेल आपके एंड पर तो है ही, बिकॉज हम आपको लेके जाने वाले हैं बिग चेक इन जर्मनी में.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: बहुत ही सिंपल सा काम करना है. लिखना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062. बहुत इजी काम है यार. इमेजिन करो ना यार, फिर हम जर्मनी जा रहे हैं, ट्रैवल सॉन्ग्स गा रहे हैं. KK का ट्रैक कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस वन. अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: There is UAE weather alert as of now. बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, लेकिन फिलहाल का टेम्परेचर 39 डिग्रीज है विद ह्यूमिडिटी अराउंड 60%.
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड बहुत सारे मैसेजेस आए हमें फॉर बिग चेक इन. हमने कॉल किया है आज निकिता को. हाय निकिता.
2: हाय अवनी, हाउ आर यू?
1: मैं ठीक हूँ. आप अपनी रिसर्च करके आ चुके हैं जर्मनी के लिए?
2: I'm working on it, yes.
1: Okay, we'll find out ये contest आप जीतते हो कि नहीं जीतते हो. आपका आज नाम shortlist होगा या नहीं होगा. आप क्या करते हो निकिता?
2: I'm working as a operations head with a fashion company.
1: Okay, तो छुट्टी मिल जाएगी?
2: 100%
1: क्योंकि आप ही मैनेज करते हो तो आप तो मैनेजर.
2: That's right.
1: Okay, मैंने तो तुक्का लगाया था यार, हद हो गई. मैनेजर्स को भी वेकेशन की जरूरत होती है, of course होती है.
2: I hope I get it.
1: तीन ऑप्शंस दूंगी मैं आपको डिशेस के, आपको उसमें से चूज करना है विच वन इज अ जर्मन डिश. ओके, डोनर, यूरोस या शावरमा?
2: शावरमा ऑफ कोर्स नॉट.
1: ओके, लॉक कर दिया जाए. 100%, 200%, 300% या 0%?
2: 100% लॉक.
1: 100%. यू श्योर?
2: यस.
1: क्या लगता है, सही है या गलत है?
2: सही होना चाहिए.
1: आपने कह दिया तो अब सही हो जाए वो.
2: I think so.
1: I'm telling you, ये मैनेजर्स की दिक्कत है. मैंने कह दिया वही सही है. That is actually correct.
2: I guess this.
1: क्या कितना 50-50% चांस पे लॉक किया था क्या?
2: It was sounding like that it is. I just guessed it to be honest.
1: आपका नेक्स्ट ड्रॉ कैसे निकलता है देखते हैं. लेकिन अगर आप सच में जाते हो जर्मनी, व्हाट आर योर प्लान्स?
2: आई वांट टू एक्सप्लोर. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट जर्मनी. आई वांट टू ट्राई. आई विल डू माय ऑल आरएनडी बिफोर गोइंग. बट या, आई एम एक्साइटेड एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ बिग एफएम व्हिच आई हैव बीन ट्राइंग सिंस लॉन्ग.
1: Let's see, आप हमारे साथ जर्मनी जाते हैं कि नहीं जाते. बट कांग्रेचुलेशंस कि आप आज का कॉन्टेस्ट जीत गए.
2: थैंक यू सो मच अवनी, थैंक यू फॉर योर कॉल.
1: वेल, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, ऑल यू गॉट टू डू इज टाइप बिग चेक इन, स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062.
0: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड थर्सडे को ना यार मुझे पहली वीकेंड वाइब्स आ जाती हैं, मेरे तक तो पहले ही पहुंच जाती हैं. आई एम गोना टेल यू थ्री बॉलीवुड फिल्म्स जिनके क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट रहे हैं. फर्स्ट वन इज तुम्बाड़. अगर आपने नहीं देखी है ना, इसका सीक्वल भी आने वाला है विद आलिया भट्ट, लेकिन तुम्बाड़ इज अ फिल्म जो आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए. सेकेंड वन इज कहानी. कहानी मेरे बचपन की फिल्म है. विद्या बालन ने क्या अमेजिंग काम किया है उसमें. ये ट्विस्ट देख के ना आप सच में दो मिनट बैठ के सोचोगे आफ्टर द फिल्म. एंड द लास्ट वन इज 13B. ये वैसे हॉरर में आती है, लेकिन फिर भी आर माधवन ने काम किया था इसमें. एंड जब मैंने ये फिल्म देखी थी आई वॉज अ किड, लेकिन मैं अकेली रात को सो ही नहीं पाई भाई. मैं बता रही हूँ, मेरे में खौफ पैदा हो गया यार. Have you watched इन तीनों में से कोई? कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? डू लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर. एंड अंटिल देन दिस ट्रैक कमिंग योर वे आफ्टर दिस वन. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:09 बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बारी ना खाना खाने के बाद आती है, पर फिलहाल खाना खाने का टाइम हो चुका है आपको और मेरा इकट्ठे।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड 3 PM पीक लंच आवर टाइम। एंड होता ना यार कि बचपन में टिफिन में वो जमी हुई मैक्रोनी, देसी मैक्रोनी जिसमें सब्जियां होती हैं, मसाले होते हैं, वो आप लेके जाते थे। एंड बहुत सालों बाद मैं अपने टिफिन में आज वो लेकर आई थी, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एवरी बिट ऑफ इट। कि बस थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, लेकिन किसे पसंद नहीं है यार, आई लव स्पाइसी फूड। और इसीलिए आपके साथ में खेलने वाली हूँ। अभी टाइम हो चुका है आपको भूख लगवाने का। बहुत ही सिंपल सी गेम है, आपको मेरे साथ खेलनी है। एंड अगर आप कॉल करते हो 800-1062 पर ये गेम खेलते हो, आप जीत सकते हो ओपन मूवी टिकट्स। करना क्या है, कॉल करना है इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062। भाई खाना देख के तो वैसे ही हमारा
2: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे।
0: सोनू निगम की आवाज कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस ट्रैक। टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Hollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Listen to her every day.
3: Mugambo! खुश हुआ
4: तंजील, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने कुछ महीनों पहले मुझे फोन किया था एंड आपकी सिस्टर आई थिंक वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल, आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो उस डिपार्टमेंट का क्या हाल चल रहा है? हुई नहीं हुई, मिली नहीं मिली?
5: अभी तक नहीं मिली, बस अभी तक सर्चिंग हुई रही है।
4: ओहो, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन है,
4: बस लड़की हो, जिंदा हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना। फिलहाल आप तंजील आए हैं तो हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। 3 चीजें जो आप दही से बना सकते हैं।
5: दही से खीर बना सकते हैं।
4: दही से खीर बना सकते हैं। वाह वाह वाह। ये जो आपने रायता फैलाया है पहले जवाब में, मजा आ गया है तंजील। 3 हनीमून डेस्टिनेशंस जहां आप जाना चाहेंगे।
5: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी।
4: ये देखो जवाब आया ना,
5: इसका जवाब माइंड में रहता है
4: हमेशा 24/7 आपके माइंड में यही रहता है सर, और इसलिए आपको ध्यान नहीं है, आप दही से खीर बना रहे हो।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM, The Big Thrill with Mansi, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Mansi,
6: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
7: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: इट्स 39 डिग्रीज आउट देयर विद 60% ह्यूमिडिटी, लेकिन बॉडी को अच्छा खासा पता लग रहा है जब वो एसी से बाहर इस धूप में निकलते हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हाइड्रेटेड।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन। विजिट अलरास.me। Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अपनी आपके साथ एंड टाइम के लंच टाइम हो चुका है आपका और मेरा दोनों का, इसलिए वक्त है आपको और भूख लगवाने का। Let's see who's in the call. Hello.
2: Hello. Hi.
1: कौन बोल रहा है?
2: तंजील बात कर रहा हूँ। आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ तंजील। आपने खाना खा लिया?
2: बस रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा हूँ, आपको कॉल लगा दिया उससे पहले।
1: ओह माय गॉड, मतलब जो भी डिश आज जीतेगी आप वही खाओगे अंदर जाके, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, माइंड सेट करके आया हूँ आज।
1: ठीक है, तो व्हाट्स योर फेवरेट डिश?
2: दाल चावल।
1: ओके, दाल चावल या छोले चावल?
2: दाल चावल।
1: दाल चावल या राजमा चावल?
2: दाल चावल।
1: दाल चावल या सांभर चावल?
2: दाल चावल।
1: दाल चावल या डोसा?
2: दाल चावल।
1: दाल चावल या पास्ता?
2: दाल चावल।
1: दाल चावल या आलू मेथी की सब्जी?
2: दाल चावल।
1: दाल चावल या आलू का पराठा?
2: आलू का पराठा।
1: ओके, फाइनली कुछ तो चेंज हुआ। आलू का पराठा या फिर आलू मेथी का पराठा?
2: आलू का पराठा।
1: आलू का पराठा या कढ़ाई पनीर?
2: कढ़ाई पनीर।
1: कढ़ाई पनीर या फिर गार्लिक नान के साथ दाल मखनी?
2: गार्लिक नान के साथ दाल मखनी। हो
1: ओके ओके, दाल मखनी गार्लिक नान या फिर आलू की टिक्की?
2: दाल मखनी।
1: दाल मखनी या गोलगप्पा चाट?
2: दाल मखनी।
1: दाल मखनी। तो बेसिकली आज तंजिल बाहर जाकर, अंदर रेस्टोरेंट में जाकर दाल मखनी ही ऑर्डर करने वाले हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, भूख के लेवल जब कहाँ तक पहुँच गए हैं? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10।
2: 9% हो गई है।
1: 9% हो गई। पहले कब तक? 4 थी के चलो लंच टाइम हो गया चला जाता हूँ।
2: 7-6 था, 7-6 तक था, लेकिन अभी बात करने के बाद हो गया 9।
1: सिक्स सेवन। ओके फाइन, थैंक यू सो मच तंजिल फॉर प्लेइंग। खाओ पियो ऐश करो विद अस। फ्री ओपन मूवी टिकट, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू, थैंक यू।
1: अगर आपको भी अपने पीक लंच आवर टाइम पर चार चांद लगाने हैं, ऑल यू डू इज कॉल करो 800-1062 पर एंड वी गोना प्ले विद यू। खाओ पियो ऐश करो, अंटिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: हो गया यार, प्यार हो गया है और बचपन से हो गया है, पर मुझे खाने से हुआ है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, and I'm just a girl यार, of course. मेरी कबर्ड में है ना ऐसा ऐसा सामान होगा कि जिसका क्या जरूरत है किसी को नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यार मुझे कभी जरूरत तो पड़ ही जाएगी, लेकिन मुझे हर दिन उसकी जरूरत पड़ती है। मैं कुकीज की बात कर रही हूँ, डार्क चॉकलेट की बात कर रही हूँ, पॉपकॉर्न, मखाने, ये सब मेरे ड्रॉर में ऐसे पड़ा होता है जैसे मैं ही सेल कर रही हूँ यार। वेल, आपकी कबर्ड में, आपके ड्रॉर में ऐसा कौन सा सामान है जो फालतू पड़ा है? एंड सबको आदत होती है यार कि कुछ ना कुछ तो रखा होता है कि यार क्या पता कहीं और कभी और ज़रूरत पड़ जाए तो तब हमें ये सामान की ज़रूरत होनी चाहिए। बट फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बिन फूड। मखाने ख़त्म हो गए हैं, नहीं लेकर आऊँगी, पॉपकॉर्न पड़े हैं, कुकीज़ मैंने आज ही ख़त्म करी है, चॉकलेट भी मेरी आज ही ख़त्म हुई है, फिर मैं बोलती हूँ मेरा वेट कैसे बढ़ गया यार।
2: सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते
0: है ना? अब आप पूछोगे क्या से क्या हुआ वेट, वो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन एक कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड टेल मी आपकी ड्रॉर में से कौन सा फालतू सामान पड़ा है। आपके लिए फालतू नहीं है, बट जनरल उसको फालतू कैटेगरी में ही डाला जा सकता है। 800-1062 इट इज, कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 4:12। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 39 डिग्रीज आउट देयर विद 60% ह्यूमिडिटी, लेकिन वेदर अलर्ट था कि यूएई में बारिश हो सकती है। अगर आपके एरिया में ऐसा माहौल बन रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है या फिर हवाएं चल रही हैं, डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। Big 106.2.

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड आप जीत सकते हो ये मूवी स्क्रीनिंग की कपल टिकट्स जो कल होने वाली है. बट बिफोर दैट, गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. नाउ यू कैन रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 धिरम्स पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. बेसिकली आपकी स्कूल राइड जो है और कंफर्टेबल और स्मूथ हो जाती है विद सेल्फ ड्राइव. वेल, वही ड्राइव करके आपको आना है कल रियल सिनेमाज दुबई मॉल में, बिकॉज हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं फॉर द फिल्म ओ माई डॉग. इट्स अ पंकज त्रिपाठी की फिल्म. बहुत ही हार्टफेल्ट ओवरवेलमिंग फिल्म है. इंडिया में बैक रिलीज हुई थी, यहाँ पे अब रिलीज हुई है, लेकिन बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे थे यार. अगर आपको कल देखनी है हमारे साथ ये, ऑल यू गॉट टू डू इज टेल मी दिस पर्टिकुलर बॉलीवुड क्वेश्चन का आंसर. सवाल ये है कि आपको मुझे बताना है पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन की कोई एक फिल्म का नाम, कहाँ बताना है. 0543091062 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है अपना आंसर, पंकज त्रिपाठी एंड कृति सेनन की कोई एक फिल्म का नाम. 0543091062 इट इज. अंटिल देन, कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड हम मोहित ने मैसेज किया है. पहले मैं अपना सवाल वापस से बोल देती हूँ. आपको मुझे बताना था पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन की कोई एक फिल्म का नाम. हाय मोहित.
2: हाय अवनी,
1: कैसे हैं आप?
2: एकदम बढ़िया, आप बताओ.
1: क्या आंसर है आपको? क्या आपने ये फिल्म देखी है?
2: हाँ, मीवी देखी है ना मैंने.
1: मीवी देखी है, कैसी लगी थी आपको?
2: मस्त है, मस्त जो उसका स्टोरी है, मस्त.
1: अच्छा, आर यू अ फैन ऑफ पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन, दोनों में से किसी एक का कि दोनों का?
2: दोनों का, दोनों का.
1: ज्यादा किसका?
2: पंकज त्रिपाठी.
1: पंकज त्रिपाठी. कोई और फिल्म का नाम बताओ पंकज त्रिपाठी की. कोई और फिल्म देखी है तो?
2: बरेल की बर्फी भी देखी है.
1: बेसिकली आप पंकज त्रिपाठी फैन है और इसीलिए आपको कल की मूवी स्क्रीनिंग की टिकट्स भी मिलती है.
2: थैंक यू सो मच.
1: मूवी का नाम है ओ माय डॉग, जिसमें पंकज त्रिपाठी हैं. एंड इफ यू आर अ डॉग लवर तो एब्सोल्युटली वर्थ इट टू वॉच. और मैंने सुना है कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला था कि आपके पास पेट नहीं है, तो तब तो आपको मस्ट देखनी चाहिए. क्या आप एक पेट ओनर हैं?
2: हाँ, मैं पहले अपने इंडिया में जब था ना तब था, अब इधर तो नहीं है, इंडिया में था.
1: So basically it's a win-win for you, Mohit. Congratulations.
2: Thank you so much.
1: It's okay अगर आपको movie screening की tickets नहीं मिली, आपके Saturday के plans मैं sort कर देती हूँ. Mega Zeal Ganesh Chaturthi Festive Shopping Exhibition Season 5 presented by Mish Bros Advertising and Events 5th September को हो रहा है 10 AM to 10 PM Double Tree by Hilton Mankhool Dubai में. बहुत कुछ shop कर सकते हो. Fashion, jewelry, lifestyle, festive essentials, entertainment and activities भी होंगी. ढोल ताशा होगा, lucky draws निकलेंगे, बच्चों के लिए बहुत fun activities होंगी and a lot more. Supported by Makwano, Tea That Connects, Sri Agrawal Sweets, Premium Indoor Sweets, Entertainment Partners, DC Productions, Emirates Teens Connect, Zeal Ganesh Chaturthi Exhibition Season 5, where shopping meets celebration. 5th September, mark the date, it's gonna be big with Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. insurancemarket.ae.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस सॉन्ग ऑफ द आवर वाज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae विद 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन यूएई ट्रस्टेड अक्रॉस यूएई एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट एवरी पॉलिसी इज अ प्रॉमिस केप्ट insurancemarket.ae फिलहाल हो रहा है मैं जाने का टाइम पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन यू कैन फॉलो अस 106.2 बिग एफएम के पेज पर दैट्स आवर इंस्टा हैंडल मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNI पले यार एंड पता है जाती हूँ तो आप यही कहते हो ना We'll be back tomorrow 1 to 5 again with the big mix. Until then, keep it locked to Big 106.2. Na Goriye by Hardy Sandhu coming your way after this track. Until then, keep it locked Big 106.2.

0: Hollywood. जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: Big 106.2. That's my song.
2: Remember, can be.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:08।
2: बॉलीवुड।

0: Day. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: वैसे अगर आपको दुबई में हिल स्टेशन के मजे लेने हैं तो हमारे स्टूडियो आ जाओ। मेरा जुखाम ही नहीं ठीक हो पा रहा है, इतनी ठंडी है यहाँ पे। फिलहाल बाहर का टेम्परेचर इज 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, ह्यूमिडिटी फिलहाल 59% पर।
3: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: गुड इवनिंग, यह है बिग थ्रिल मानसी एंड ऑफ कोर्स आज मेरा गला थोड़ा बैठा है. कल मैं बहुत रोई हूँ. मेरे साथ होता है ये. आई एम अ डॉग पर्सन एंड एवरी सिंगल मूवी दैट आई वॉच हैज अ डॉग. अगर उस डॉग को एक खरोच भी आ जाती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. आई थिंक नो ह्यूमन इन माई लाइफ कैन टेक प्लेस ऑफ a dog because I grew up with them and I truly believe जिन्होंने experience करा है अपने घर, अगर आपने dogs रखे हैं, you grew up with them. It's the most unconditional form of love. And ye to movie he is about dogs. I'm talking about Oh My Dog. Kal special premiere tha. The movie is releasing tomorrow. Bahut hi kamal movie hai. Please go and watch with your families. And movie ke director aane wale in the studio. And inke bete ne is movie mein bahut kamal kaam kiya hai. Main baat kar rahi hu Amit Rai ki. So yeah, the movie also stars his son Mahi Rai. And his name is Appu. And he's fantastic. Inke apne doggy ne bhi isme kaam kiya hai. मोमो जो डॉगी आपको इस मूवी में दिखाई देगा इज एक्चुअली अमित्स ओन फैमिली पेट. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी इज इन्होंने कोई बहुत पेडिग्री डॉग्स नहीं रखे हैं. द इंडीज, अगर आप इंडिया से हैं आपको पता होगा कि क्या कंडीशन होती है इंडिया में इंडीज की, स्ट्रे डॉग्स की. सो इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मूवी. आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि प्लीज गो एंड वॉच द मूवी. इन फैक्ट वी आर डूइंग अ वेरी स्पेशल स्क्रीनिंग Oh My Dog की इस सैटरडे को दुबई मॉल में शाम 5 बजे रील सिनेमाज, गिविंग यू अ चांस टू विन कपल इनवाइट्स. पंकज त्रिपाठी अगर ऑन अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मूवी. ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ही इज इन फैंटास्टिक वर्क. टू विन कपल इनवाइट्स ऑल यू हैव टू डू इज मुझे बताना है ये जो डायलॉग है.
3: अंकल खुश रहो बेटा, तुम कौन?
4: आ जाओ अंकल, आप ही का घर है ना, किराए पे तो नहीं लिया. आ जाओ शर्माओ मत.
3: अरे हम कैसे शर्माएंगे भाई.
5: नमस्ते अंकल.
3: अभी पैर छुआ फिर नमस्ते.
5: अरे हम कह रहे हैं.
6: अरे ये कह रहे हैं.
5: नमस्ते आंटी.
6: नमस्ते बेटा.
3: चिराग कौन है बेटा?
5: मित्र है हमारे.
7: अरे बाबा ये विद्रोही जी हैं. कल बताया तो था इनके बारे में.
2: कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना. ब्रिलियंट मूवी. अगर आपको मूवी का नाम याद आ गया है इधर गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062 और यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पर. गिविंग यू चांस टू विन अ कपल इनवाइट्स फॉर अ वेरी वेरी स्पेशल मूवी एंड अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ ओ माई डॉग.

0: आए गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल. मैं हूँ मानसी. गला थोड़ा बैठा है क्योंकि कल मैं बहुत रोई हूँ. आई सॉ दिस वेरी वेरी स्पेशल मूवी. इट वाज अ पॉसम एक्सपीरियंस. ओ माय डॉग एंड ओ माय गॉड, इफ यू आर अ डॉग पर्सन, इवन इफ यू नॉट, प्लीज वॉच द मूवी. इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी. द मूवी इज रिलीजिंग टुमारो एंड वी डूइंग अ वेरी स्पेशल स्क्रीनिंग ऑन सैटरडे शाम 5 बजे एट रियल सिनेमाज दुबई मॉल. राइट नाउ आई हैव अभिषेक. हाय अभिषेक.
2: हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसा रहा आपका थर्सडे? क्या प्लान वीकेंड के?
2: वीकेंड का प्लान बस आपसे टिकट मिल जाए तो बस मूवी देखने.
1: आर यू अ डॉग पर्सन?
2: मैं डॉग पर्सन हूँ, बट मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ डॉग पर्सन है.
1: तो आपने रखे हैं, आपके घर में पेट्स हैं या फिर शी हैज पेट्स बैक होम?
2: उसके घर पे था और लाइक मैं जब उसके घर पे गया था तो वो उसे छोड़कर मुझ से बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी. एंड आई मीन व्हेन शी गॉट सिक, लाइक द डॉग, व्हेन द डॉग गॉट सिक, देन शी वाज वेरी अपसेट. वो यहाँ से डॉक्टर को फोन कर रही थी, पूछ रही थी उसको डॉक्टर को क्या मतलब. उसने ढेर सारे डॉक्टर्स को कनेक्ट किया, उसको मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया. तो आई कैन स्टिल उसकी कितनी केयर करती है, तो आई नो लाइक हाउ इट फील.
1: तो आप यहाँ पे लेकर आए उनके लिए पेट के? नहीं लाए,
2: अभी प्रोसेस में सब चल रहा है. आई होप वन डे आई कैन ब्रिंग.
1: या हम सब वन डे की उम्मीद में है, क्योंकि बात यह है कि बच्चों जैसा ख्याल भी रखना पड़ता है उनका. बट योर वाइफ विल लव द मूवी. इन फैक्ट एनी वन हुज एवर हैड अ डॉग, यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज एंड यू विल गो बैक होम एंड प्रॉब्ली हग योर डॉग्स अ बिट मोर. एंड अगर आपके पास नहीं है डॉग्स तो आप बस प्लान बना लेंगे दैट आई वॉन्ट टू गेट वन. फिलहाल ये जो मैंने डायलॉग सुनाया था ये किस मूवी से था?
2: ये बरेली की बर्फी.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. कंग्रेचुलेशंस, 2 tickets फॉर यू.
2: Thank you
1: to
2: so
1: come
2: much.
1: And enjoy a very special screening. मैं आपके लिए लकी हूँ.
2: मैंने एक कॉल किया और एक रिंग में आपने फोन उठा लिया.
1: चलो, किसी ने तो माना कि मैं लकी हूँ. काश मेरे बॉसेस भी ऐसा सोचते. बट आई हैव टू से कि आप बहुत लकी हैं दैट यू विल गेट अ चांस टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी. मैं बहुत रोई हूँ, तो अपनी बीवी को भी आप बोलना, बिकॉज शी इज अ डॉग पर्सन, कि आई मेकअप ना करके आए, पूरा बिगड़ जाएगा. सो शी विल हैव अ लॉट ऑफ फन. आई विल सी यू ऑन सैटरडे. थैंक यू सो मच अभिषेक.
2: Thank you so much, man.
1: Bye. You too. Bye.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill, and whatever you're planning for the weekend, cancel all the plans and go and watch this movie. I'm talking about Oh My Dog ki movie kal release hone wali hai here in the UAE. Fantastic story, you'll thank me later. Maine aapko suggest kiya. I was lucky enough to witness the premiere, and I am luckier because the director of the movie is in the studios with me. We've got Amit sir joining us, and on behalf of all those who love dogs, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ मूवी लाइक ओ माई डॉग.
2: थैंक यू.
1: अब जिनको नहीं पता है, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, बट इस मूवी में जो दो मेन लीड्स हैं, एक इनका बेटा है माही और एक इनका अपना डॉगी है मोमो. तो कितना डिफिकल्ट था सर दोनों के साथ काम करना? किसने ज्यादा नखरे दिखाए सेट पर?
2: नहीं, नखरे एक्चुअली स्टार्स दिखाते
1: हैं. दोनों ही स्टार हैं.
2: हमारे दोनों स्टार नखरे नहीं दिखाते.
1: दोनों स्टार है.
2: दोनों ने बहुत कमाल का काम किया है. एक्चुअली वो बॉन्ड जो ह्यूमंस और डॉग के बीच में होता है, अगर वो डॉग आपका खुद का हो तो वो ज़्यादा निखर के आएगा. मुझे कोई ऐसा डॉग नहीं चाहिए था जिसको आप ऑर्डर दें और वो परफॉर्म करे और वो हम शूट कर सकें, ऐसा कुछ चाहिए था. तो ये मैंडेटरी हो गया था कि आपके पास डॉग आपका खुद का हो. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको फिल्म में वो एकदम मस्ट हो जाता है. सो इफ यू आर प्लेइंग, इफ अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू प्ले अमिताभ बच्चन, सो जो दूसरा रोल उनके बेटे का आएगा वो किसी और को आप ले ही नहीं सकते, वो अभिषेक बच्चन जी करेंगे.
1: एब्सोल्युटली ट्रू.
2: तो वैसा था कि अगर इस फिल्म में एक बच्चे और डॉग के बीच का जो ये देखना था, तो वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप 4-5 साल पुराना होना चाहिए था, कि वो बचपन से वो डॉग सही में उस बच्चे के साथ पला हो.
1: और बहुत ऑर्गेनिक.
2: हाँ, ऑर्गेनिक. तो वो दिखते आपको लगता है कि इतना प्यार कैसे करते हैं वो.
1: बट ये माही की फर्स्ट मूवी है.
2: या दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म.
1: ब्रिलियंट एक्टर. बट ऑल्सो फॉर ऑल दोज हू डोंट नो, हमने बहुत सारी मूवीज में बॉलीवुड में भी डॉग्स देखे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट मूवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिसमें इंडीज है. And आपका खुद का पेट है. So since when did you fall in love with dogs? I'm sure इसके पीछे भी कोई कहानी होगी.
2: नहीं, मेरे जो पिछली फिल्म के प्रोड्यूसर थे ना, उनका एक कोई किस्सा था जो बहुत साल पहले मुझे उन्होंने सुनाया था. डॉग मैंने बचपन में बहुत बार चाहा कि रखें, हमारे घर की माली हालत के कारण शायद वो नहीं कभी कर पाए और मम्मी डैडी अलाउ भी नहीं करते, कि कौन जिम्मेदारी, दिन भर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर छोटा है. तो वो लेकिन एरिया के जो डॉग, उस हमारे जमाने में जो एरिया के डॉग होते थे, वो घर में ही गली में ही रहते थे. तो एक एफिनिटी तो उनकी तरफ आपका अफेक्शन तो हो ही जाता है. तो ये एक्चुअली मेरे किसी असिस्टेंट ने मेरे को बताया था कि किसी के पास ये डॉग रेस्क्यू किया गया है और उसके पैर में थोड़ा मार लगा. तो वो दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर समबडी टू अडॉप्ट. तो लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि, तो तब कोरोना का टाइम था तो लोग बाहर नहीं निकलते थे. तो मैं जिस होटल में बैठ के लिख रहा था, एक फिल्म थी डियर जस्सी, मैं वही लिख रहा था. और ठीक जो उन्होंने मैसेज भेजा, तो जो एड्रेस भेजा था, मुझे लगा मेरा ही एड्रेस मुझे क्यों भेजा है जहाँ मैं बैठा हूँ.
1: ओके.
2: तो मैंने उनसे फिर से एसएमएस किया, मैंने कि यार ये एड्रेस फिर से भेजना, एड्रेस मेरा ही एड्रेस दिया है तूने. तो बोला नहीं, मैंने आपको उसका ही एड्रेस दिया है जहाँ वो डॉग है. तो बोला ये तो वही दिखा रहा है लोकेशन. तो इट वाज जस्ट अ रोड अवे फ्रॉम माय लोकेशन. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाके देखना चाहिए. मैं शाम के टाइम वॉक के लिए निकला, तो मैं गया और देख के आया. उसने मुझे बताया अगर कल ले जाना चाहते हैं तो आपके पास बास्केट और एक पेपर, एक 40 पन्ने का डॉक्यूमेंट साइन करना होगा. मुझे समझ में नहीं आया, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप क्या कैसे रखेंगे सब. तो बहुत ही टेरिफिक एक्सपीरियंस था वो. और वो आया जिंदगी में फिर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिंदगी में आएगा तो उसके 4-5 साल बाद एक फिल्म कर रहे होंगे और वो फिल्म वही करवाएगा.
1: बट आई थिंक हर डॉग अपनी किस्मत लेकर आता है, और आपकी किस्मत में डॉग होना जरूरी है और वो आपकी जिंदगी में ऐसे ही आता है. बट मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने दो मूवीज बनाई, ओ माई गॉड 1, ओ माई गॉड 2, और अब ये ओ माई डॉग. अब इसमें भी महाभारत का थोड़ा सा रेफरेंस है, अगेन नो स्पॉयलर्स. तो ये दो पैरेलल स्टोरीज चलती हैं. तो आपने ये कहानी जो है, ये मोमो जब आया उसके पहले लिख ली थी कि बाद में?
2: नहीं, मुझे लगता है कहानी तो उसके आने के बाद ही आई होगी कभी जहन में. क्योंकि जिस तरह वो मुझको देखता था और जिस तरह वो रात को 3 बजे भी मेरा इंतजार करता, आप 4 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, रात को लेट आए, लेकिन वो दरवाजे पे वहाँ रहेगा. वो आप दरवाजा खोलेंगे ही विल बी देयर. और मेरे डॉग का थोड़ा एक जादुई किस्सा है कि मैंने वो टेस्ट करके देखा कि मेरा घर वो आइलैंड के उस तरफ है, तो आपको फेरी से उस तरफ जाना होता है, तो मेरी गाड़ी उस तरफ पार्क करता हूँ मैं. तो जैसे ही फेरी से मैं उतरता हूँ और मैं गाड़ी चालू करता हूँ और मैं निकलता हूँ, तो यहाँ वो घर में भौंकता था, एंड विच इज अराउंड 3.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई प्लेस.
3: ओके,
2: सो इट्स क्वाइट फार फ्रॉम दैट. इट टेक्स अराउंड, वॉकिंग तो एक घंटा लगता है, ड्राइव करके 16-17 मिनट लगता है. तो मैंने ये टेस्ट करके देखा कि एक बार सिक्योरिटी वालों को 3-4 बार फोन किया कि माई डॉग इज बार्किंग, मतलब हाँ सर बार्क कर. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम, वो घर में भौंकेगा तो पता चलता है कि मैं आ गया हूँ.
3: आई थिंक जिसने भी डॉग्स रखे उन्हें पता है दिस इज द मोस्ट अनकंडीशनल फॉर्म ऑफ लव जो आप ऑनेस्टली किसी ह्यूमन से कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मोहब्बत है जो आपको सिर्फ एक डॉग ही दे सकता है. कल रिलीज होने वाली है सर मूवी हियर इन द यूएई, सो एनीथिंग यू'd लाइक टू से टू पीपल हु हैव पेट्स एंड द पीपल हु जस्ट लव ग्रेट स्टोरीज, बिकॉज इट इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी, यू शुड वॉच इट विद योर चिल्ड्रन विद योर फैमिली.
2: मैं हर जगह ये लाइन तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पेट होगा तो आपके लिए आप तो जाएंगे ये फिल्म देखने के लिए, क्योंकि इसका नाम हो माई डॉग है. लेकिन मैं ये लाइन जरूर कहता हूँ कि इफ़ यू डोंट हैव पेट यू मस्ट वॉच दिस फिल्म, क्योंकि ये एक्चुअली फिल्म उन लोगों के लिए बनाई गई है.
3: राइट,
2: पेट वालों के लिए फिल्म नहीं है. क्योंकि वो जो जिस करुणा की बात हो रही है फिल्म में, जिस एम्पैथी कॉम्पैशन और अनकंडीशनल लव की बात हो रही है, वो उनको देख के ही समझ में आएगी, वही वो उसका मर्म समझ सकते हैं. सो इट इज बेसिकली फिल्म फॉर एवरीबॉडी, बट स्पेशली फॉर दोज हु डोंट हैव एनी पेट.
3: ट्रू, एंड इफ यू हैव पेट्स लाइक मी तो मतलब आप तो पहले दूसरे सीन में टप टप टप टप टप टप आंसू बहने लगेंगे, वी विल फील ऑल द फील्स. सो कांट वेट फॉर द मूवी, इट रिलीजेस टुमारो. इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी, आई कांट स्ट्रेस इनफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रे डॉग्स हैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट इंडिया में उनके हालात ठीक नहीं है, तो आपने ये जो कोशिश की है, ये जो इतना खूबसूरत मैसेज जो आप लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच. एंड यू ऑल्सो टच a lot of sensitive topics, क्योंकि recently I think last year around Independence Day कुछ बहुत mass stray dogs को उठा लिया गया था इंडिया में, तो I think ये बहुत जरूरी है मैसेज आना, and thank you for creating this story. Any last words? We're giving away screening invites, हम screening करने वाले हैं, तो मैं आपसे एक word में अगर आप इस movie को describe करना चाहें तो वो क्या होगा?
2: एक वर्ड में तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि थैंक यू दुबई. क्योंकि मैंने कल जब स्क्रीनिंग हुई ख़त्म, तो जिस तरह का प्रतिसाद, मतलब रिएक्शन आया है, और जिस तरह लोगों ने, मतलब मैंने देखा रात को 11:30-12 बजे फिल्म ख़त्म होने के बाद जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया है, तो आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया है. तो थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग दिस लव ऑन बोथ ब्रूनो अका ऑस्कर एंड मोमो अका ऑस्कर.
3: अच्छा, मोमो का रियल नाम ऑस्कर है. ओह, एंड ऑस्कर इज द अदर डॉग इन द मूवी जिसका रियल नाम ब्रूनो है और माही का नाम अप्पू है मूवी में, मुझे याद हो गई है. ऑल्सो बिफोर वी लीव यू, पंकज त्रिपाठी के साथ आप ये दूसरी बारी काम कर रहे हैं एंड ही इज ब्रिलियंट अगेन, लाइक I don't have to say how good he is on screen. अब मैंने ये Google पे पढ़ा है that उन्होंने ये movie free में की है.
2: या ही जब उन्होंने कहानी सुनी थी, एक्चुअली मुझे लगता है उन्होंने कहानी और फिल्मकार को देख के फिल्म करने के बजाय, उनके पास जीनी और प्रिंस नाम के दो डॉग्स हैं.
3: ओह,
2: ये उनके पास दो डॉग खुद हैं. जब कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने फिर एक दिन बाद मुझे अपनी वाइफ के जन्मदिन के दिन ऐसी पार्टी में धीरे से आके कहा कि भाई मैं एक रोल करने वाला हूँ फिल्म में. तो मैंने सोचा यार मैं इनको कैसे पूछूंगा, फिल्म तो एक्चुअली जिस तरह बुनी गई है उसमें इस तरह का फॉर्मेट नहीं है. तो बोला कोई भी एक कैरेक्टर में जब मैंने सुन चुका हूँ मैं, तो मैं वो तय कर लूंगा क्या करना है.
3: हाउ स्वीट.
2: देन मुझे लगा अब ये करेंगे तो फिर वो बजट वो सारा कुछ. लेकिन जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मेरे को पैसे नहीं लेने हैं, मैं कोई पैसा नहीं चाहती.
3: हाउ स्वीट. सो गो एंड वॉच द मूवी. सो मच अमित सर फॉर जॉइनिंग अस, एंड वी कांट वेट टू सी मोर स्टोरीज फ्रॉम यू ऑन द बिग स्क्रीन. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:15।
2: बिग

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
3: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: Big 106.2 Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 3,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill, Mansi. We are very thrilled for the weekend. बहुत कुछ होने वाला है इस वीकेंड. वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने शॉपिंग करनी है. एवरी सिंगल ईयर मेरे घर गणपति आते हैं एंड मेरी सारी शॉपिंग जो है वो सॉर्ट होती है एट द ज़ील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन. दिस इज देयर सीजन 5, द मेगा ज़ील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन सीजन 5, प्रेजेंटेड बाय मिश ब्रोज एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स. दिस इज हैपनिंग ऑन द 5th ऑफ सितंबर, सैटरडे को सुबह 10 से रात 10 बजे एट डबल ट्री बाई हिल्टन मनखूल में. एंड यू कैन शॉप फॉर फैशन, दिस ज्वेलरी, लाइफ स्टाइल, फेस्टिव एसेंशियल्स एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर द कमिंग फेस्टिवल सीजन. इन फैक्ट एंटरटेनमेंट भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज है, ढोल ताशा, लकी ड्रॉ, बच्चों के लिए एक्टिविटीज, लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फूड. एंड दिस इज सपोर्टेड बाय मुकवानो टी दैट कनेक्ट्स, श्री अग्रवाल स्वीट्स, प्रीमियम इंदौर स्वीट्स, एंटरटेनमेंट पार्टनर्स DC Productions, MRI's Teens Connect, ZEAL Ganesh Chaturthi Exhibition Season 5, where shopping needs celebration. So, set in reminders, I'll see you there 5th September ko, Doubletree by Hilton Mankul mein. This event is made large by us, Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: big thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: If you've not made any plans for the weekend, I've got the perfect plan. Saturday go, we're screening this beautiful movie. The director, Mr. Amit Rai, was in the studios with us. And of course, he'll be a part of the screening. We're screening Oh My Dog. And what a brilliant movie ye hone wala hai. Real Cinemas, Dubai Mall mein sham 5 baje. And aapke paas couple tickets jeetne ka mauka tha right now. Manoj, good evening. अरे पीछे से बच्चे बुला रहे हैं आपको. हेलो मनोज जी.
2: जी अच्छा, बच्चे को मैं लाया स्विमिंग के लिए तो वो स्विमिंग कर रहा है.
1: अच्छा, फिलहाल मुझे एक बात बताओ, है आपके घर में डॉगी? आपको डॉगीज अच्छे लगते हैं?
2: मुझे नहीं लगते पर्सनली, मगर मेरी मिसेज को अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब उसके पास थे दो डॉग जब सिंगापुर में रहती थी उस वक्त बस उसकी डेथ हो गई. मतलब वो थे, उन्होंने 8-10 साल थे ना. वो मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है.
1: तो आपको 100% ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि आपको प्यार हो जाएगा.
2: या आई वाज जस्ट लिसनिंग दैट आप बता रहे थे कि बहुत अच्छी मूवी है, तो मैंने कहा देखें, ट्राई करते हैं.
1: बिल्कुल देखनी है. मतलब पहली बात तो अगर मैं आपके घर में रहती और अगर वोटिंग कराती, 100% डॉगी आ ही गया होता, क्योंकि बच्चों को पसंद है, बीवी को पसंद है, आपका वोट काउंट ही नहीं होता है. बट आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस मूवी. आई होप कि थिएटर से निकलने के बाद आप अपने बच्चों को बोले कि चलो लेट्स गो एंड अडॉप्ट वन. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी, ब्यूटिफुल मूवी. मुझे लगता है मैं इस दुनिया में सिर्फ लोगों को कन्विंस करने आई हूँ कि डॉग से बेटर कुछ नहीं है.
2: हाँ, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात.
1: मुझे एक बात बताओ, कहीं आपने कंडीशन तो नहीं रखी थी कि मैं या फिर डॉगी?
2: नहीं, असल में मेरे आने से पहले उसकी जिंदगी में दो डॉग थे.
1: वो बात ये समझती होंगी कि जितनी मोहब्बत एक डॉगी आपको करता है, कोई भी मनोज नहीं कर सकता है आपकी लाइफ में. बट मनोज, प्लीज एंजॉय द मूवी. आप आइए, चाहे तो आप अपनी वाइफ के साथ आइए या अपने बच्चे को लेकर आइए, बहुत मजा आएगा. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी.
2: Okay, thank you so
1: much. Thank you, Manoj. Bye.
2: Thank you. Bye.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, हां जी, द टाइम राइट नाउ 7:07।
2: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल. मैं हूँ मानसी. आई एम श्योर बच्चे बड़े थ्रिल्ड हैं टू गेट बैक टू स्कूल. दे गेट अ चांस टू मीट देयर फ्रेंड्स, न्यू क्लासरूम्स एंड ऑफ कोर्स न्यू गैजेट्स. दिस बैक टू स्कूल सीजन, इट्स टाइम टू पावर अप फॉर AI एम्पलीफाइड लर्निंग एट शराफ टीजी. शॉप फॉर लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड यू गेट अ चांस टू विन योर परचेज बैक अप टू 5,000 दिरहम्स विद यू बाय वी पे प्लस. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंजॉय करेंगे एक्सक्लूसिव 5% डिस्काउंट. सो हेड टू शराफ टीजी शोरूम्स आज ही फॉर द बेस्ट बैक टू school deal.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001 हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी एंड सबसे थ्रिलिंग एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी. इट्स टाइम फॉर द बिग चेक इन एंड इफ यू हैव नॉट चेक्ड इन येट डू इट राइट अवे. सेंड अस अ व्हाट्सएप बिग चेक इन, अपना पूरा नाम लिख के भेजना है 0543091062 जस्ट लाइक सोनम. हाय सोनम.
2: हाय,
1: हैव यू, कैसा रहा आपका थर्सडे?
2: एक्चुअली आई एम सिंधी एंड वी हैव अ बिग फेस्टिवल टुडे.
1: थडरी है ना?
2: थडरी
1: वो बना होगा, मेरा फेवरेट है वो मीठा लोला.
2: यस,
1: तो आपने बनाया मीठा लोला?
2: यस ऑफ कोर्स.
1: सो इफ वी ट्रैवल टुगेदर, होपफुली फिंगर्स क्रॉस, क्या हम उसे स्टोर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं साथ में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, और आई कैन मेक पैश फॉर यू.
1: हाउ स्वीट. देखो ये जो मौसम होता है ना चेक इन का, उसमें मुझे इतनी मक्खन लगती है कि मुझे मजा आ जाता है.
2: मक्खन के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है.
1: किसको? मीठा लोला को. मैंने एक्चुअली कभी खाया नहीं है, बट मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स देखी है.
2: इफ वी आर मीटिंग, आई विल ब्रिंग फॉर यू.
1: टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. इफ यू टेक मी टू जर्मनी देन ओनली यू विल गेट टू टेस्ट, अदरवाइज बी हैप्पी विद द इंस्टाग्राम. ऑलराइट सोनम, आर यू अ फूडी? व्हेनेवर यू ट्रैवल डू यू लाइक एक्सप्लोरिंग द लोकल क्विजीन?
2: लव ट्राइंग न्यू क्विजीन.
1: सो डू यू कीप ट्रैवलिंग ऑफन?
2: यू कैन से या.
1: व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रैवल्ड?
2: आई थिंक मार्च. इंडिया
1: तो घर वालों से मिलने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं. आप कहीं और ट्रैवल करने गए थे?
2: श्रीलंका.
1: अच्छा, यूरोप कब गए थे लास्ट?
2: यूरोप कभी नहीं गई.
1: कभी नहीं गई? ओहो, डेब्यू होने वाला है.
2: आई वांट टू.
1: चलो जी, फिंगर्स क्रॉस. फिलहाल आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चन व्हिच इज फूड रिलेटेड. इफ यू मैनेज टू गिव मी द राइट आंसर, आप हो जाएंगी शॉर्टलिस्ट फॉर दिस फैंटास्टिक चेक इन टू जर्मनी.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: ओके सोनम, तो मैं आपको देने वाली हूँ तीन ऑप्शंस, जिसमें से एक जर्मन डेलिकेसी है, द अदर टू आर नॉट. आपने गेस करना है विच ऑफ देम इज अ जर्मन डिश, अ जर्मन डेलिकेसी. ऑलराइट, ऑप्शन नंबर वन मोमोज, ऑप्शन नंबर टू क्लॉप्स, ऑप्शन थ्री डिमसम.
2: ऑप्शन नंबर टू क्लॉप्स.
1: क्लॉप्स, कोई बात नहीं, बोलना है ना है, खाने में मजा आना चाहिए. इसी के साथ तुक्का सही जगह लगा है, क्योंकि आई एम श्योर आपने डिमसम्स एंड मोमोज खाए होंगे. सो दैट वाज द ऑड वन आउट, बट इट्स अ जर्मन डेलिकेसी. आप हो गई हैं शॉर्ट लिस्ट. कांग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू सो मच.
1: आई होप इट्स अ वेरी वेरी फेस्टिव ओकेजन टुडे. तो थडरी के दिन आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, सो हो सकता है आपका पहला यूरोप ट्रिप हमारी टीम के साथ हो. फिंगर्स क्रॉस्ड.
2: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच, बट भूलना नहीं है, अगर सिलेक्ट हो जाती हो फिनाले में तो आई रियली वॉन्ट टू ट्राई द.
2: आई विल नॉट.
1: अच्छा, टीच मी समथिंग इन सिंधी. हाउ कैन आई विश माय फेलो सिंधी फ्रेंड्स हैप्पी थडरी? हाउ डू यू डू दैट?
2: थडरी जी डाडो डाडो वाधायू हुजन ताखे.
1: थडरी जी डाडो डाडो बधाई. मुझे एक ही चीज आती है, डाडो सुठो और मीठा लोला और दाल पकवान खाना, तो वो आप ले आना. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय
2: बाय. थैंक यू.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Jetour UAE, part of Elite Group Holding, and Dabur Pudinhara. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Oh My Dog, a heartwarming family entertainer that won hearts in India and is now coming to cinemas across the UAE. Starring Pankaj Tripathi, Pawan Malhotra, Mahi Rai and 250 canine stars. Written, directed and produced by Amit Rai. Distributed by Fars Film. Big 106.2 has an exclusive treat for you. Keep listening for your chance to catch Oh My Dog on 5th September at 5 p.m. at Real Cinemas Dubai Mall. The Big Mix. Miss kiya gaya?
2: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
3: हाय सारा.
4: हाय अवनी.
3: आर यू एक्साइटेड फॉर बिग चेक इन जर्मनी?
4: ऑफ कोर्स.
3: बट लेट्स सी आप ये जर्मन फूड डिश कॉन्टेस्ट जीतते हो कि नहीं. जी, यू रेडी?
4: यस.
3: सो फर्स्ट ऑप्शन इज सॉरक्रॉट, सेकंड इज किमची, थर्ड इज पिकल्स.
4: सॉरक्रॉट.
3: यू श्योर अबाउट दिस वन?
4: यस.
3: लॉक कर दिया जाए?
4: यस, लॉक कर दिया जाए.
3: वन टू टेन के आपने खुद को 6 नंबर दिए, फिर भी आप जीत गए भाई.
4: आई वॉज सो स्केप्टिकल, आई वॉज लाइक इज इट करेक्ट और नॉट, बट देन आई वॉज लाइक ओके.
3: अच्छा, किमची खाई है?
4: हाँ खाई है.
3: पिकल्स खाए हैं?
4: पिकल्स ऑफ कोर्स.
3: और ये सॉरक्रॉट खाया है?
4: नहीं, अभी तक तो नहीं.
3: नहीं खाया है, तो ये आपकी चेकलिस्ट में होगा जब आप जाएंगे.
4: That's amazing.
3: Okay. Well, अभी आपका नाम सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुआ है, अभी और प्रोसेस बचा है, और भी कैंडिडेट्स होंगे. लेट्स सी आप जर्मनी जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट फॉर द डे आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है इन बिग चेक इन.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: A 15 to 20 minute delay if you are around Jeddah, Dubai Design District. बहुत ही slow moving traffic है near Rasulpur Industrial Area. अगर आप नादल शीबा के आसपास हैं, इट इज स्टैंड स्टिल वर्का से मर्डिव, मर्डिव टू मुहेसना. अगेन 57 मिनट डिले एट द मोमेंट. हैवी ट्रैफिक स्टिल ऑन शेख जायद. 50 टू 1 आवर आपको लगने वाले हैं, मतलब 50 मिनट से लेकर एक घंटे का सफर रहेगा. एंड गरुड़ के पास भी इट इज बम्पर टू बम्पर डेरा से इफ यू गोइंग टू विजनहादा. अबू हेल बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक. रिगा अगेन इज पैक्ड. फहीदी दुबई गोल सुख जुमेरा रोड गोइंग टू विज उम सुकीम. मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक है. Let me know कहां ट्रैफिक नहीं है. 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
6: नहीं, ये तो मुफ्त है.
2: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Alright, आज ही के दिन back in 1999 ये movie release हुई थी, which is widely remembered as one of Bollywood's most gripping psychological crime thrillers, directed by Tanuja Chandra, and the movie is a cult. Shahrukh Khan and Ajay Devgan were the first choice to play the lead role of Professor Aman Varma, and दोनों ने decline कर दिया because of their recent box office misfires. चाहत और डुप्लीकेट शाहरुख की उस समय फ्लॉप हुई थी, एंड अजय देवगन ऑफकोर्स साइन कर चुके थे ये मूवी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बट ऑप्टेड आउट बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट द सब्जेक्ट एंड द फीमेल लीड हैड अ बेटर रोल. करिश्मा कपूर वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर द फीमेल लीड, दैट वॉज रीत इन द मूवी, CBI officer Reet, बट शी सेड नो बिकॉज ऑफ सर्टन इशूज विद हर डेट्स. This was Alia Bhatt का secret Bollywood debut. बहुत सारे hints आपको मैंने दे दिए हैं. आशुतोष राणा, I think इस movie के बाद बहुत popular हुए थे for the negative character that he played. And till date, I cannot sleep at night. If I watch this movie रात को, मैं सो नहीं पाती हूँ. This movie also marked the acting debut of TV star Aman Varma, and interestingly, Akshay Kumar ke character ka naam movie mein Professor Aman Varma hi tha. Ab yaad aa gaya is cult classic ka naam, which I'm sure yaad aa gaya hoga. Aaj ke din 1999 mein release hui thi. Give me a call 800-1062 par.

0: big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो सुन रहे हो ना.
3: हे

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Alright, a while ago, I gave you a few hints कि आज ही के दिन 1999 में ये मूवी रिलीज हुई थी जो टिल डेट बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से एक है. शाहरुख खान, अजय देवगन दोनों को लीड रोल दिया था, उन्होंने मना कर दिया. करिश्मा कपूर वॉज द फर्स्ट चॉइस फॉर द कैरेक्टर रीथ, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट से यस टू द रोल बिकॉज ऑफ द डेट्स. Pretty Zinta, Akshay Kumar, and of course the man जिसे देख के आज भी मुझे रात को नींद नहीं आती है, आशुतोष राणा. Iconic terror था, मतलब he delivered a chilling award winning performance. Right now I've got Azhar. Good evening.
3: Good evening, Mansi. How are you?
2: Wow, आप इतने दुख दर्द पीड़ा में क्यों हैं? जब आपने फोन किया था पीछे बच्चे रो रहे थे, आपके रो रहे थे?
3: हाँ, मेरे बच्चे रो रहे थे.
2: ऐसे ही होता है क्या, जिंदगी ऐसी हो जाती है क्या अजहर बच्चों के बाद, शादी के बाद?
3: हाँ,
2: ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है.
3: नहीं नहीं है, है.
2: सुनाई नहीं दे रही है.
3: है. मैं बस साइड मतलब दूसरे रूम में आया हूँ सो दैट आई कैन स्पीक टू यू विदाउट एनी डिस्टरबेंस.
2: हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. फिलहाल अजहर, 1999 की ये मूवी कौन सी है जिसके इतने सारे हिंट्स दिए मैंने?
3: ये है संघर्ष.
2: बिल्कुल सही जवाब. क्या 1999 में जिंदगी में आप संघर्ष कर रहे थे?
3: मैं उस वक्त तो नहीं,
2: अभी
3: छोड़ा था स्कूल में. अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है, बुरा नहीं है.
2: हाँ, सुना मैंने वो जो दो संघर्ष पीछे रो रहे थे. बट लेट्स टॉक अबाउट द मूवी. व्हाट एन आइकॉनिक मूवी. मतलब मैं ये मूवी आज भी रात को नहीं देख सकती, मुझे बहुत डर लगता है.
3: आई मीन आशुतोष राणा वाज फिनोमिनल इन दैट वन.
2: आई नो राइट, यू नो द वे ही यूज्ड टू स्क्रीम विद हिज फिंगर ओवर हिज लिप्स. ओ माय गॉड, स्टिल गिव्स मी गूज़बम्प्स. एंड कितनी बार देखी है आपने ये मूवी?
3: मैंने एक या दो बार देखी बिट्स एंड पीसेस में ऑन द टीवी. एंड हाँ, बट याद है मुझे मूवी पूरी.
2: मुझे खुश नहीं लग रहे हो आप, क्या हुआ है?
3: मैं ठीक हूँ.
2: अच्छा, पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट ही नहीं लग रही है जिंदगी में.
3: अरे है.
2: आपके संघर्ष अलग है जो मैं समझ नहीं सकती हूँ.
3: हाँ, ये हो सकता है.
2: स्कूल जाते हैं आपके बच्चे?
3: No, they are small. One is three and one is one.
2: You are dealing with toddlers. तो फिर तो ये drain out होना बनता ही बनता है.
3: Yeah,
2: but thank you so much for giving us the right answer. चलो, can I play you a gana from the movie that you like?
3: बिल्कुल.
2: कौन सा sir?
3: ये मुझे रात दिन बस मुझे.
2: ये बच्चों की मम्मी के लिए आपने गाया कभी?
3: हाँ
2: गाया है.
3: मैंने गाया नहीं है, उन्हीं को dedicate कर रहा हूँ.
2: Arranged marriage?
3: हाँ नहीं, arranged.
2: Arranged marriage में इतनी मोहब्बत कि दोनों पीछे से रो रहे हैं. फिलहाल ये गाना सुनते हैं. आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1999 में. फॉर ऑल दोज हु लव दिस गाना एंड दिस मूवी, थैंक यू सो मच अजहर. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
3: यू टू मैन. थैंक यू. बाय.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Oh My Dog, a heartwarming family entertainer that won hearts in India and is now coming to cinemas across the UAE. Starring Pankaj Tripathi, Pawan Malhotra, Mahi Rai and 250 canine stars. Written, directed and produced by Amit Rai. Distributed by Fars Film. Big 106.2 has an exclusive treat for you. Keep listening for your chance to catch Oh My Dog on 5th September at 5 PM at Real Cinemas Dubai Mall. Listen to her every day.
1: Mugambo! खुश हुआ
2: तंजील, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने कुछ महीनों पहले मुझे फोन किया था एंड आपकी सिस्टर आई थिंक वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल, आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो उस डिपार्टमेंट का क्या हाल चल रहा है? हुई नहीं हुई, मिली नहीं मिली?
3: अभी तक नहीं मिली, बस अभी तक सर्चिंग हुई रही है।
2: ओहो, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन है।
2: बस लड़की हो, जिंदा हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना। फिलहाल आप तंजील आए हैं तो हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। 3 चीजें जो आप दही से बना सकते हैं।
3: दही से खीर बना सकते हैं।
2: दही से खीर बना सकते हैं। वाह वाह वाह, ये जो आपने रायता फैलाया है पहले जवाब में, मजा आ गया है तंजील। 3 हनीमून डेस्टिनेशंस जहां आप जाना चाहेंगे।
3: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी।
2: ये देखो जवाब आया ना,
3: इसका जवाब माइंड में रहता है
2: हमेशा 24/7, आपके माइंड में यही रहता है सर, और इसलिए आपको ध्यान नहीं है, आप दही से खीर बना रहे हो।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM, The Big Thrill with Mansi, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Mansi. Some

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: No rush, no noise, just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Love, lo-fi, and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।